नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।

वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य जपिए बोलो नित्य